0: मेगाहर्ज कृष्णसार जतिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जतिको तेज

0: नाई कृषि पेशा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी ओ कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
0: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्यक लाग प्रयास करी वो कराई
0: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन
2: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ
3: होइन हामीसँग अझै आशा छ मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो
3: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 9861414199
5: यो कृष्ण सार एफएम
6: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

हुए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.
2: यो कृष्ण सार एफएम
3: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज.

0: खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागि।
3: ओहो आज दाई हाँ नहीं मजा लागत हो मजा से दवाई करे ना कहतो
4: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
3: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
4: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाए। छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
3: ए ओसिनो कल से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
4: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा।
3: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिदा हो
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाई न वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुईत ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पक्ति रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई। वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए। जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहाँ मिलत।
3: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता
4: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
5: भर्ना खुल्यो।
6: होप इंटरनेशनल एकेडमी मा नया शैक्षिक सत्र का लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो।
5: हजुर कंप्यूटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल मैनेजमेंट संकाय मा नया भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौं।
6: नेपालगंज मा विगत 21 वर्ष देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालय मा सुविधा सम्पन्न कंप्यूटर ल्याब पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
5: फुटसल क्रिकेट भलिबल बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
6: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको
5: होप इंटरनेशनल एकेडमी गुणस्तरीय शिक्षा को भरपर्दो आधार।
6: थप जानकारी का लागि
5: संपर्क नंबर 081-551-462 98-580-24-462 98-580-20-645 ठेगाना होटल रोयल बांके को पूर्वतिर नेपालगंज बांके।
3: खुशी खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी।
4: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा।
3: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कु उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन बराल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
4: नोट, ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डाक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा। नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चोक नेपालगंज, संपर्क नंबर 081536465, 98249806665 वो 98482804665।

बाहर आँखी से गिरल मोती के हर दाना टरो के नहीं से कम, बस तोहार में आपन है समिया दे से कम। यदि हुई कले से तोहार सक्कु करिए दिन है शायद में धर के, मैं तोहार संगे जिंदगी बिताना अनुमति मांगत हूं। तोहार निर्णय के अस्से में राम साइकिल वाला बंटू।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Koyle Pony'a. Extreme Energy Drink.
1: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
2: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
1: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
3: भर्ना खुल्यो।
4: होप इंटरनेशनल एकेडमी मा नया शैक्षिक सत्र का लागि कक्षा 11 मा भर्ना खुल्यो।
2: हजुर, कंप्यूटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल मैनेजमेंट संकाय मा नया भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछु।
4: नेपालगंज मा विगत 21 वर्ष देखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालय मा सुविधा सम्पन्न कंप्यूटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
3: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
4: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको
3: Hope International Academy, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
4: थप जानकारीका लागि
3: सम्पर्क नम्बर 081-551-462, 98580-24462, 98580-20645। ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर नेपालगंज बाँके।
1: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
2: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
2: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: आ रेडियो लिए घुमत हो।
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से
4: सोमवार और बिफे के दिन।
2: और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरौमिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृषार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से।
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: आ रेडियो लिए घुमत हो।
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से
4: सोमवार और बिफे के दिन।
2: और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरौमिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृषार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से।
5: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुशीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
6: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
5: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
6: होइन हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
7: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
5: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
6: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
7: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 98 61 14 16 99।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले लिए बैठे हैं और

हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो सुरताई प्यारा से कार्यक्रम लेके आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम परसोता संचालक मियाँ जी प्रायदिक माँ जो सदा साथी रहे हैं आज भी हमरे चंदा जी। हाँ तो सरता 2083 तीन महीना आज आठ गते है यानी अषाढ़ के आठ गते है, महीना अषाढ़ के रहे और दिन आज सोमवार है। और आज जो हमरे मुहर्रम पर्व के आज छः तारीख है यानी आज मेहंदी के दिन है। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 081415122 के लाइन में नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970181415122 के लाइन में हमरे जो देश विदेश के साथी आवाजी आप लोग मुहर्रम पर्व के जैसे हुसैन के तख्ती कबूतरनामा जंगनामा शहादतनामा नोहा यानी जौन भी आप सुना चाह जाते हैं आपका तुरंत मैसेज में पठवा जाए या फोन में यहाँ संपर्क करके बतावा जाए आपका यानी मुहर्रम पर्व के नात कवाली तो होबे करी। मगर अभी जो शहीदी के दिन है यानी मुहर्रम के पर्व है तो इमा आप लोगन के यहाँ अच्छा अच्छा जो मुहर्रम के नोहा वगैरह जत्ता है सब आप लोगन का सुने मिली। तो ये कार्यक्रम जो आप लोग सुना जाते हैं देखा भी जाते हैं तो आप लोग यहाँ शेयर लाइक कमेंट जरूर करते रहा जाए। तो ये कार्यक्रम में यहाँ जो हमरे कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जो हमरे ज्योति टेलर के प्रोप्राइटर पप्पू मास्टर जफरुद्दीन उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कैसे कार्यक्रम में यहाँ। तो ऐसे आप लोग सुना है 081415122 के लिए नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 00970181415122 के लाइन में आवाज़ ही हमरे देश विदेश के साथी। तो आज के क्वेश्चन है काला है पर कौवा नहीं, काला है पर कौवा नहीं, बेढब है पर हवा नहीं, काला है पर कौवा नहीं, बेढब है पर हवा नहीं, करे नाक से सारा काम जल्दी बताओ उसका नाम। एक नंबर माँ है, दूसरी नंबर माँ है हाथ पैर नहीं जिसके, हाथ पैर नहीं जिसके, नहीं कहीं आता जाता, हाथ पैर नहीं जिसके, नहीं कहीं आता जाता, फिर भी सारी दुनिया के खबरें हमें सुनाता। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का एकदम लाखों करोड़ों के बीच में टी शर्ट दिया जाए पुरस्कार ज्योति टेलर से, जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट यानी सब मेरे के कपड़ा सेहत हैं वहाँ से आप लोगों के यहाँ सुना। तो अब हम चले थे पहले प्यारा से सुना जाए आज हुसैन जो मुहर्रम के पर्व है तो आज कासिम है मेहंदी तुम्हारी, तो मेहंदी के पर्व के आज मेहंदी है तो मेहंदी के आज सुना जाए ये मेहंदी गीत।

हाँ तो श्रोता ये प्यारा से जो आज कासिम है मेहंदी तुम्हारी खैर बहुत अच्छा रहा है, तो इसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए। समय कैसी 415-122 के लाइन में नेपाल के साथी आओ जी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में देश विदेश के यानी हमारे अन्य देश के लोग आवाजाई। अगर आपका मैसेज में जो भी आज मुहर्रम पर्व के नात नोहा कवाल नोहा जंगनामा कबूतरनामा शहादतनामा जो भी सुने के यहाँ है तो आप लोग मैसेज में पठा दिया जाए 98155-96-366 आपके मैसेज भी हम समावेश जरूर करवाए। तो इसे आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए, आज के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के उत्तर भी दिया जाए। तो पहला नंबर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम ध्यान से सुना जी। काला है पर कौवा नहीं, काला है पर कौवा नहीं, बेढब है पर हवा नहीं, करे नाक से सारा काम, अब बताओ उसका नाम। एक नंबर माँ है, दूसरी नंबर माँ है, हाथ पैर नहीं जिसके, हाथ पैर नहीं जिसके, ना कहीं आता जाता, फिर भी सारी दुनिया की खबरें हमें सुनाता। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए, का होए उत्तर सही दे वाले साथी का पुरस्कार जो टी शर्ट दिया जाए। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लाइन में आए के अपने मन के बात रखा जाए कि आंसर के उत्तर का है, तो आप लोग एकदम ध्यान से समझ बूझ के बतावा जाए। कैसे लाखों करोड़ों के बीच में आपके नाम जाए जब पुरस्कार पावा जाए। तो ये कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 माँ है, जहाँ से आपका टी शर्ट दिया जाए, जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट यानी सब मेरे के कपड़ा मिलत है, वो सियाँ जाता है वहाँ से आपका पुरस्कार दिया जाए। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए। तो ले हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन है कि मुहर्रम पर्व के वो है। हाँ तो साथी सुना जाए, कोई भी जो शहादतनामा कबूतरनामा जंगनामा या का जो भी है आपका मुहर्रम पर्व के सुने मिली तो सुना जाए प्यारा से सॉन्ग।

0: toile panie. Extreme energy drink.
1: Beer Dental.
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरकी लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
2: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
4: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
5: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स जीवनको लागि।
7: नेपालगञ्जका लागि सुपर स्पेशियालिटी विशेषज्ञ सेवा सहित आएको छ शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली। हाम्रा सेवाहरू अनुभवी तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको साथमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र परामर्श, गम्भीर मृगौला रोग, डायलिसिस व्यवस्थापन, मृगौला संक्रमण, पत्थरीको निदान तथा उपचार, सुगर र उच्च रक्तचापको उपचार व्यवस्थापन तथा मृगौला प्रत्यारोपण तयारी र निगरानीको लागि पश्चिम नेपालमा एकमात्र डिएम नेफ्रोलोजिस्ट डाक्टर सौरभ सिंह हमाल। एपेन्डिक्स, पित्त थैली, आन्द्रा, कलेजो सम्बन्धी समस्याको उपचार तथा दूरबिनबाट अपरेसन सेवा, पेटको क्यान्सरको शल्यक्रिया र इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी जाँचका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएको एमसिएच ग्यास्ट्रो तथा हेपाटोबिलियरी सर्जन डाक्टर प्रदीप थापा। नवजात शिशु तथा बाल रोगको उपचारको लागि कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा पूर्व कार्यरत डाक्टर प्रतिमा खड्का। प्रसूति तथा स्त्री रोगको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट आउनुभएकी डाक्टर प्रेरणा मल्लिक। साथै गुणस्तरीय प्रयोगशाला, इन्डोस्कोपी जाँच, इसिजी, इइजी, एनसिभी, एक्सरे तथा भिडियो एक्सरे जाँचका साथै सम्पूर्ण किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरूको विशेषज्ञ डाक्टरबाट गुणस्तरीय उपचार र परामर्शको सुविधा रहेको छ। सम्पर्क शिखर हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर प्राली, भेरी अस्पताल अगाडि रामलीला मैदान जाने बाटो, रोयल क्याफे भएको बिल्डिङ, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081-530-220 र 98-41-586-979। 081-530-220 र 98-41-586-979।
8: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलमा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकायका लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
9: हो, भर्ना खुल्यो। व्यवसाय, बैंकिङ, उद्यमशीलता, होटल व्यवस्थापन, वित्त, कानून, पर्यटन तथा कर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्रमा भविष्य निर्माण गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
8: व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, होटल व्यवस्थापन, पर्यटन, वित्त, व्यवसाय गणित र सामान्य कानून,
9: विज्ञान संकाय, चिकित्सा इन्जिनियरिङ, प्रविधि अनुसन्धान, स्वास्थ्य विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि
8: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विज्ञान।
9: विद्यार्थीहरूले आफ्नो करियर लक्ष्य अनुसार गणित, जीव विज्ञान वा कम्प्युटर विज्ञान जस्ता विषय संयोजन छनोट गर्न पनि सक्नेछन्।
8: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड
9: हो? सबै विषयमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू, केस स्टडी तथा परियोजनामूलक अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण,
8: पूर्ण दिवसीय कक्षा सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सिप विकास,
9: आधुनिक विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा होटेल व्यवस्थापन प्रयोगशाला, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कार्यशाला,
8: नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, MBBS, BHM, BITM, BBA, CA, MBS तथा अन्य व्यवस्थापन तथा विज्ञान क्षेत्रका लागि करियर परामर्श,
9: उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको सुविधा। अफिस खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म। कक्षा सञ्चालन 2083 असार 1 गतेदेखि। थप जानकारीका लागि
8: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल, पासाङलामु रोड, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081532607 530602।
1: बाबा के कान पीड़ा थे, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
10: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। BTE, CIC, RIC जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
10: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेग्रा, आर्मी ब्यारेक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
11: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
1: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल माले जाए।
10: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो? पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
1: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है तो?
10: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक OPD सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
1: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जायत हैं, कांति आरोग्य अस्पताल में यहाँ।
10: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।
12: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डालें, ना ही ठीक आते।
13: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाब, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
13: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-1000।

हाँ तो श्रोताई प्यारा से आप लोग सुनागा जो मुहर्रम पर्व के मूवी, तो इसे अब हम आप लोगों से कहते हैं कि अतिशयत जो सुना जाता है आप लोग आपे के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 MHz से जो चलत है कार्यक्रम चना जोर गरम। हाँ तो साथी अब हम का बताए आप लोगों के हैं कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी, ज्योति टेलर जो सदा लाइन में है जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट सब मेरे के कपड़ा सेंध, तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुनाए कैसे 415-122 के लाइन में। तो अब हम चले थे पहले 2 बजे के टेम चेक के बाद में हम आप फिर मिला जी रेडियो के साथ ही रहा जी कहे से। अब पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन है उसके बाद में 2 बजे के टेम चेक के बाद में हम आप फिर मिला जी नंबर में जुड़े रहा जी।

0: मेगाहर्ट्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाते है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफे सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 98 44 88 35 75 और 98 08 25 40 37।

0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
3: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
2: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया?
3: सुनो, हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
4: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तहदिल हुआ जाए।
3: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377।
5: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
6: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
7: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारेन्टी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि। अहिले धमाधम बिक्री भइरहेको छ।
6: स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
7: संपर्क 97051148 47।
6: सोफा हब नेपालगंज,
7: विश्वास में नंबर 1,
6: क्वालिटी में सबै भन्दा बेस्ट।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: अरे रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाली ये बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गंगा मैया सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सारे

0: हाँ तो सरताई जो प्यारा से आप लोग सुनागा, खैर मुहर्रम पर्व है सही, जो आज छठवीं है यानी आज मेहंदी है। बस आप लोगन का यही है कि नंबर में जुड़ा जाए 081415 122 के लाइन में नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970 81415 122 के लाइन में आ जाए। कार्यक्रम के प्रायोजक है जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के, जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब कपड़ा सेत हैं, वहाँ से आपका पुरस्कार दिया जी। तो कोई साथी हमारे फ़ोन लाइन में आए रहें गए कि हैं चले गए, कहते हैं खसकाए लाओ खटिया चपरेन में, जब जब बात करें मुकाबला आओ थे तब टिन टिन नहीं करा था भाग ले। हाँ तो साथी पहला नंबर में काला है पर कौआ नहीं, बेढब है पर हवा नहीं, कौन का करे नाक से सारा काम अब बताओ उसका नाम, एक नंबर माँ है। दूसरे नंबर माँ है हाथ पैर नहीं जिसके, ना कहीं आता जाता फिर भी सारी दुनिया की खबरें हमें सुनाता, दोनों का सही बताओ जाए सही बता ले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो साथी ऐसे हमारे स्टूडियो के नंबर है 081415 122 के लाइन माँ जुड़ा जी, और हमारे जो देश विदेश के साथी हो तो आप लोग 00970 81415 122 के लाइन माँ आप लोग आवा जी। कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलाता है आप के प्रिय रेडियो किसी सार FM 94 MHz से। तो साथी आज 6 तारीख है, काल 7 तारीख है यानी 27 है। कोई साथी आए गए पहले उनका देखिए को कहाँ से हैं।
1: हेलो।
0: हाँ हेलो,
1: सलाम अलैकुम भैया जी।
0: वालेकुम सलाम, आपके नाम?
1: हम राजीव मौर्या जी बोल रहे हैं, यहाँ भवानी बाग वाला नंबर 11 से।
0: हाँ
1: भवानी बाग वाला नंबर 11 से राजीव मौर्या जी बोल रहे हैं।
0: तुम ही हो बहुत डाहे रहो तिघरी।
1: नहीं मिया जी, हम तो कोई तरह का अभी उठे जागे हम कार्यक्रम सुनी थे,
0: हमका लागत है राजीव मौर्या हुए।
1: नहीं क्वेश्चन के आंसर बतावा जाने कौन वाला क्वेश्चन रखा गया है।
0: जैसे पहला नंबर में है काला है पर कौवा नहीं, बेदब है पर हवा नहीं, कौन ना करे नाक से सारा काम अब बताओ उसका नाम, एक नंबर माँ है। दुई नंबर
1: एक नंबर वाला हमारे ख्याल से हाथी हो,
0: और दुई नंबर माँ है हाथ पैर नहीं जिसके, ना कहीं आता जाता फिर भी सारी दुनिया के खबरें हमें सुनाता।
1: अरे ये टेलीफोन हो
0: आए?
1: टेलीफोन।
0: और पहला नंबर वाला का हुआ
1: हाथी
0: हाथी आए और राजीव बढ़िया है।
1: हाँ सर भैया जी, आप लोग के दुआ आशीर्वाद है बस और का।
0: हाँ वे कह रहा हूँ वो नहीं कि नहीं।
1: अरे बाबा ये के चक्कर में मुहर्रम मुहर्रम में मीठा भात वात खाए।
0: अरे तो इसे तो खूब बढ़िया है, इसे मीठा और खिचड़ा मलीदा
1: तो सिन्नी उन्नी
0: और सिन्नी वगैरह इसे चलो ना खाए ले खूब हन के।
1: तो ठीक है कौन मेरे भाई और का
0: हाँ
1: कोई दिन आई और का।
0: अच्छा ठीक है तो ठीक है नमस्कार।
1: ठीक है नमस्कार।
0: हाँ साथी राजीव मौर्या रहा है भवानी बगिया से। तो साथी इसे सुने कैसी 415 122 के लाइन में आबाजी कहे से कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चला था आप के प्रिय रेडियो किसी सार FM 94 MHz से। तो अब हम चले थे पहले प्यारा से कव्वाली तरफ, हाँ कव्वाली तरफ सुना जाए मुहर्रम के पर्व के जो ये प्यारा से मूवी।

0: Sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9580303479 र 9840821380।
4: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
5: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
4: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई किए से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ हैं शारीरिक अपांगता होए से भी बची सका जात है।
5: जानकारी रहक चाहिए, कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
6: अम्मा के दवाई करावे के है लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
7: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
6: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
7: 2400 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक OPD सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्यक्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
6: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
7: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।
4: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
7: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा होए के साथ हैं, तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
7: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
4: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
7: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
4: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
7: संपर्क नंबर 081536465, 98249806665 और 98482804665।

हाँ तो श्रोता, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन और प्यारा से जो मुहर्रम पर्व के आप कवाली सुनागा। खैर आप लोगन का बहुत अच्छा लाग हो तो आप लोग नंबर में आवा जाए सुने कैसी 415-122 के लाइन में। हाँ जो हमरे पड़ोस भारत के साथी लोग हो तो 00970-81-415-122 के लाइन में आवा जी। हाँ ऐसे मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं लिखे। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है, ये मैसेज लिखे वाले हैं एक खजुरा बाजार से जो मैसेज भेजे नीतू हेयर कटिंग सैलून से बिंदुश्री ठाकुर जी। कहने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था मियाँ जी, आज मेहंदी है, मेहंदी के दिन है आज, आज मेहंदी निकली। हाँ जो मुहर्रम में यहाँ जो 6 तारीख के मेहंदी है, हाँ तो आज मेहंदी है। तो कहने हमका कबूतर नामा सुना दिया जी, हाँ या हुसैन के तख्ती सुना दिया जी। ठीक है हम आपका सुनाए देवे हुसैन के तख्ती या कबूतर नामा। तो कहने हमका बिंदु श्री ठाकुर के चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुना चाहते है और घर परिवार का सब लोगन का और चिन्हे ना चिन्हे जाने वाले सब लोगन का धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजे ने नान बाबू पौना पान भंडार से ये लिखी ने। सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार, तो नमस्कार है नो। कहने कोई प्यारा से पर्व मुहर्रम के ऊपर के सुनाए दिया जी, साथी जो घर परिवार माँ सबका सुनाओ चाहते है और हमका पौना कहके चिन्हे जाने वाले सब साथी लोगन का सुनाओ चाहते है। ऐसे दूसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजे ने मुबारक खां जो सऊदी से ये लिखे ने। सर्वप्रथम संचालक मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। ये कहने हमका हुसैन के तख्ती सुनाए दिया जी, जो सुनावा चाहे थे हम अपने घर परिवार का, मगर आजकल तो हम सऊदी में हन, मगर घर हमारे नेपाल के ठिकाना है खजुरा गाँव पालिका 5 रजनवा माँ। तो अपने घर परिवार का सुनावा चाहे थे अपने अपने पापा यानी अपने अब्बा के यहाँ जो महमूद खां है, अपने लौंडा हसनैन खां का, बैदू का, लाल खां का और गोमती बनिया का और तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहिए तो धन्यवाद है। तो साथी ऐसे आप लोग नंबर में जुड़े रहा जी। तो हम चले थे प्यारा से पहले हुसैन की तख्ती सुना जाए, मगर पहले छोटा सा हाँ सुना जाए प्यारा से हुसैन की तख्ती।

हाँ तो दोस्त सबका क्या जाए एकदम कार्यक्रम के अंत अंत में हन तो साथी अब हम फोन भी ना ले पेबे तो ऐसे ही कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ के सुनागा आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता है। तो साथी आज के जो ये क्वेश्चन ना है क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट में मैसेज में तो बहुत जने लिख के पठाए नहीं है मगर मैसेज वाला बस रेडियो के डायरेक्ट माना जाता है तो आज के जो सबसे सही उत्तर दे नहीं है राजीव मौर्या जो ही भवानी बाग नेपालगंज बाके से तो आज के विजेता हैं राजू राजीव मौर्या जी। हाँ राजीव जी आपका बहुत बहुत बहुत बधाई है बहुत बहुत शुक्रिया है। तो साथी पहला नंबर मारा है काला है पर कौवा नहीं बेढब है पर हवा नहीं करे नाक से सारा काम अब बताओ इसका नाम। एक नंबर मारा है हाथी दो नंबर मारा है हाथ पैर नहीं जिसके ना कहीं जाता ना कहीं आता जाता सारी फिर भी सारी दुनिया को खबरें हमें सुनाता। हाँ तो साथी हो रेडियो यानी टेलीविज़न कहाओ या रेडियो कहाओ मैंने वो के हाथ पैर नहीं है वो सारी दुनिया की खबर सुनाओ तो जात आवत कहूँ नहीं है। तो राजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट सब मेरे के कपड़ा सेट है उनका उनके पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद दी थे। कार्यक्रम का देश दुनिया में जो ऑडियो वीडियो दोनों का पठन हमारे साथी सहयोगी जो हमारे एकदम जिगरी साथी चंदा जी उनका भी जो बरसों वर्ष दिन के आज जो मेहंदी के त्यौहार है मेहंदी है यानी मुहर्रम पर्व के तरफ से उनका भी बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया दीते हैं कि आवाज़ का ऑडियो वीडियो में पूरा देश में अपने दिल लगाए के अपने मेहनत लगाए के अपना कंप्यूटर में आँखी देखो एकदम भिड़ावे परत है कि कोई तरफ निगाह झपका तो जानो आम टपका तो निगाह झपका तो अगर कुहू अंगुरी दूसरे बटन पर लाग गया तो वो मैं दूसरी चीज आएगी तो बहुत एकदम प्राविधिक भी एकदम बेचारे बहुत दिल लगाए पड़त है सारा काम तो उन्हीं का करे पड़त है। तो उनका चंदा जी का भी बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया और मुबारकबाद माहिर मुहर्रम के तरफ से और खिचड़ा मलिदा खाए के यह सबका लोगन का बुलाओ जाता है। आ चंदा जी तो हम बुला ली कि न बुलाई चलिए हो हाँ तो दो सबका किया जाए कार्यक्रम जो आप लोग सुना जाते हैं अवधि कार्यक्रम ये कार्यक्रम सातों दिन के है जैसे बीप है और सोमवार के मियाँ जी चलावते हैं इतवार मंगल बुध के चंदा जी चलावते हैं शनिचर के दुई ठो दुई जने सखीन सखी आते हैं चंदा और संध्या जी यानी कार्यक्रम सब पैक है आप लोग सुनते रह जी साथ देते रह जी कमी कमजोरी अपन सलाह सुझाव देते रह जी। तो आज के कार्यक्रम से हम परसोता संचालक किरव मियाँ और हमारे प्राधिक में चंदा जी दोनों जने विदा लिया जाते खुदा हाफिज अस्सलाम वालेकुम नमस्कार।

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: धोए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागि।
3: बीर डेंटल, बीर डेंटल, बीर डेंटल।
4: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामिछाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामिछाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधि द्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081-532-375।
6: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
7: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
6: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
7: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
8: नींद ना आए हमको, हाय जग सोना है।
6: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायिक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
7: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए, करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कैके कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए, करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सरसलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए, करावा जाए।
6: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कर सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट हो के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए, करावा जाए।
7: तब आवश्यक सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय, केंद्र, प्रयोगशाला, निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाते है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
6: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। एतन कहाँ यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा जीर्ण रोग कान में यहाँ ढूसी भवा कान खजुआब कान से कम सुनाई देव कान बंद हो बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा कान के जाली में छेद भवा कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है बीटी सीआईसी आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है
10: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो
9: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दरमत संभव है बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697
11: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए
12: भैया बहुत दिन से महीनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं कहाँ जाए तो बढ़िया रही
9: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है
12: सही वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया
9: सुनो हुआ औरतन के बांझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया अपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है
13: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तह दिल हुआ जाए
9: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 97649-11786 98224-92377
11: सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य
14: Back to back. Back to back.
15: In this song on.
14: Stay tuned.

0: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
2: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
3: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
4: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
5: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर बाँके। सम्पर्क नम्बर 0184140007 र 98482363।
6: भर्ना खुल्यो।
7: होप इन्टरनेसनल एकाडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा 11 भर्ना खुल्यो।
8: हजुर, कम्प्युटर व्यवस्थापन विज्ञान तथा होटल म्यानेजमेंट संकायमा नयाँ भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ।
7: नेपालगञ्जमा विगत 21 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रावास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ।
9: फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहेन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
7: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको।
9: होप इन्टरनेशनल एकेडमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
7: थप जानकारीका लागि
9: सम्पर्क नम्बर 081551462, 98580-24462, 98580-20645। ठेगाना होटल रोयल बाँकेको पूर्वतिर, नेपालगञ्ज बाँके।
7: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुलमा व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकायका लागि आवेदन खुला गरिएको छ।
10: हो, भर्ना खुल्यो। व्यवसाय, बैंकिङ, उद्यमशीलता, होटल व्यवस्थापन, वित्त, कानून, पर्यटन तथा कर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्रमा भविष्य निर्माण गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर।
7: व्यवसाय अध्ययन, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, होटल व्यवस्थापन, पर्यटन, वित्त, व्यवसाय गणित र सामान्य कानून।
10: विज्ञान संकाय, चिकित्सा इन्जिनियरिङ, प्रविधि, अनुसन्धान, स्वास्थ्य विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि
7: भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विज्ञान।
10: विद्यार्थीहरूले आफ्नो करियर लक्ष्य अनुसार गणित, जीव विज्ञान वा कम्प्युटर विज्ञान जस्ता विषय संयोजन छनौट गर्न पनि सक्नेछन्।
7: किन रोज्ने ब्राइटल्यान्ड?
10: हो, सबै विषयमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू, केस स्टडी तथा परियोजनामूलक अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण,
7: पूर्ण दिवसीय कक्षा सञ्चालन, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सिप विकास,
10: आधुनिक विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान तथा होटेल व्यवस्थापन प्रयोगशाला, उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कार्यशाला,
7: नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, MBBS, BHM, BITM, BBA, CA, MBS तथा अन्य व्यवस्थापन तथा विज्ञान क्षेत्रका लागि करियर परामर्श,
10: उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको सुविधा। अफिस खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म, कक्षा सञ्चालन 2083 असार 1 गतेदेखि। थप जानकारीका लागि
7: ब्राइटल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल, पासाङ लामु रोड, नेपालगञ्ज। सम्पर्क फोन नम्बर 081532607, 530602।
11: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डालें, नाई ठीक आते।
12: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिक्स, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी की कमी होएक समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव रीढ़ टिहुनी पिराप झंझनाहट हो नस पिराप झमझमाव हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी निसंतानता गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
13: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता कंसल्टेंट सर्जन यूरो सर्जन जनरल कैंसर मूत्ररोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
12: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेत रोड आदर्श नगर नेपालगंज 10 बांके वन कार्यालय के नेरेन पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5131000।
14: Back to back, back to back.
15: In this song,
14: on. Stay tuned.

तिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

धोए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ.
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेस्ट द डिफरेंस, फील द एनर्जी.

0: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
1: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
0: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
1: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
2: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
0: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
1: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
2: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड, काठमाडौँ। फोन नम्बर 98 61 14 16 99।
3: ई रिक्सा चालक लोगन मिहा, नेपालगंज उपमहानगरपालिकाकै अनुरोध, मिति 2083 जेठ 1218 गते तक ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका जानकारी करौत है। सचेतना शुरू मिति से 60 दिन बाद ई रिक्सा लाइसेंस के बिना ई रिक्सा चलावे न पावे खोए से तब तक नागरिकता के प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप में यहाँ साथेन रख के ई रिक्सा चलावे का अनुरोध है। साथेन उप महानगर पालिका से लाइसेंस के खातिर फार्म भरे और परीक्षा तैयारी के खातिर निःशुल्क कक्षा संचालन की है। फार्म भरे खातिर नागरिकता, ब्लड ग्रुप के रिपोर्ट और मोबाइल नंबर साथेन लेके नेपालगंज उप महानगर पालिका में यहाँ संपर्क करे संपूर्ण ई रिक्शा चालक लोगन के यहाँ अनुरोध किया जाता है। ई अभियान मिति 2083 साल जेठ 26 गते से 2083 अषाढ़ महीना के अंतिम तक रहे ब्यौरा जानकारी करावा जाता है। संपूर्ण नगरवासी, ई रिक्शा सवारी धनी और चालक लोग उप महानगर से हाथ में यहाँ हाथ मिलाई के नेपालगंज के यहाँ सभ्य, सुरक्षित और व्यवस्थित बनावा जाए। संपर्क के खातिर रवि महाउत, नगर प्रहरी जवान, मोबाइल नंबर 98 225 82 983।
4: यो कृष्ण सार FM
5: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
2: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
4: अब सुन्नुहोस् श्री स्टील्स रेडियो कथा तेस्रो तथा अन्तिम भाग शर्माजीको घरलाई भूकम्पले हल्लाइरहेको हुन्छ झ्याल बाहिर धुलोले ढाक्छ बत्ती फोन सबको लाइन काटिन्छ सब धेरै डराएका हुन्छन् तर एकछिनमा भूकम्प रोकिन्छ शर्माजीले श्री FE550D बनाएको घरलाई फेरि केही भएको हुँदैन अनि त्यसपछि शर्माजीको परिवारको जिन्दगी ढुक्कले चल्न थाल्छ अनि वर्षौँपछि फेरि एक दिन ठुलो भूकम्प आउँछ श्री FE550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील
5: आओ आओ तू पायलट से आई ना मत ढील कर दो संजू कुछ समस्या तो नहीं हुई
6: कुछ नहीं हुई सर पायलट के बंदर आप सब मारे खनु सर लग के घूमा कर रहे हो जैसे चेयर सर लग में तो हल्का तो नहीं करना मोर सब हो गए कि था पहले ना तो पहला जा के
5: मोर सब को है ना चलेना तो नहीं चलेगा ना
6: नहीं चलेना सर
5: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा पूरा से कह रहा हूँ मोर सब को देव गोपाल से भैया ना चलाए नहीं बिठा सब को मूला से भी वाकर मरहल 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा वो मुआलर देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ साले पकड़ानी भी
6: सर मुआल सप्पा देखना से क्या करना
5: सप्पा मुआलर देख पड़ना से थे जात से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुलक कुछ देर पास आ समझे सप्पा दस सकत वह वर्षे मुआल अवस्था में फिर सप्पा हाथ से चलाए नहीं भी बेंतन इतना माल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कहीं खजाना से गिर था
7: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वा मार गई सप्पा है ना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा संपी सप्पा दस सिट्ठा संभव हुई सम सप्पो फोटो खींची वो पहचान कलाक विज्ञापन से संपर्क करी
8: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ बाकी था पता लगाए लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सकता
9: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
10: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
11: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

0: Toilet Pony, yeah. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्यक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके
3: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना
4: फेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल फेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे इन्डोस्कोपी प्रयोगशाला अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380 मोबाइल 9850303479 र 9840213780
5: उचित शुल्कमा उत्कृष्ट शिक्षा कहाँ पाइएला
6: त्यसका लागि नेपालगञ्जको धम्बोजीमा अवस्थित सन्मिम इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल छँदैछ नि
5: हाम्रा विशेषताहरू
6: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक भएको
5: सुरक्षित वातावरण र यातायातको सुविधा भएको
6: मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षण सिकाइ
5: अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड
6: वातानुकूलित कक्षा कोठा
5: अत्याधुनिक प्रयोगशाला खेलकुद र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरू मार्फत विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा विशेष ध्यान दिइने
6: एसईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यस विद्यालयमा कक्षा 11 व्यवस्थापन संकायमा भर्ना खुलिसकेको छ
5: सिट सीमित छन् आजै भर्ना हुनुहोस्
6: सन्बिम इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल नेपालगञ्ज 1 धम्बोजी बाँके सम्पर्क नम्बर 081536422 98580 36422 98580 27994
7: यो कृष्ण सार FM
8: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
1: सुनो बहनी, खुशी के खबर।
2: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
1: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन की

0: यहाँ जात है 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता कंसल्टेंट सर्जन यूरो सर्जन जनरल कैंसर मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
0: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड सुर्खेत रोड आदर्श नगर नेपालगंज 10 बांके वन कार्यालय के नेरेन पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5-31000।
2: हाय के गर्ने होला अब, सुगर पनि बढ्दैछ, थाइरोइडको समस्या अझ छुट्टै छ, कति ठाउँमा देखाएँ तर भएन।
3: ए तिमी यति चिन्तित किन, के भयो फेरि?
2: के भने नि, डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
3: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन, मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
2: कस्तो खबर?
3: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
2: ए साँच्चै?
3: अझ सुन, महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
2: ए त्यो त झन् राम्रो
3: हो नि। डाक्टर पुनमाचारी एमबिबिएस एमडी केयु IVF स्पेशलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई MBBS MSKU वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
2: वाह, अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
3: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्, दैनिक ओपिडी सेवा, गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा, भिडियो एक्सरे, ECG तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
2: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
3: हो त, अब ढिला नगर, जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
2: हजुर, आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज। फोन नम्बर 081-5-31-860 र 081-5-31-861।
3: अब चिन्ता होइन, समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।

0: California. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसलाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके
3: बहिनी हमार घर तो बढ़िया है मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है
4: हाँ तो दीदिया अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही
3: अच्छा ऐसा तो चिंता काहे करी हो स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है
4: साचू दीदिया का का मिलत है हुआ
3: सुनो बहनी स्टाइलदार सोफा आरामदायी बेड आकर्षण डाइनिंग टेबल टीवी रैक ऑफिस फर्नीचर गलीचा कारपेट के साथ है घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है
4: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है
3: काहे न बनाई दी बहनी अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है
4: और मने डिलीवरी और फिटिंग
3: अरे बहनी बाके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है इके साथ फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है
5: आशा तो अब हमरो घर भी नवा जस बनावे है स्टार फर्नीचर लाइन से शुरू कीन जाए हाँ दीदिया
6: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 9860073370 और 9815067682
7: ब्राइट लैंड सेकेंडरी स्कूल में व्यवस्थापन तथा विज्ञान संकाय का लागि आवेदन खुला गरिएको छ
8: हो भर्ना खुल्यो व्यवसाय बैंकिंग उद्यमशीलता होटल व्यवस्थापन वित्त कानून पर्यटन तथा कॉर्पोरेट नेतृत्व क्षेत्र में भविष्य निर्माण गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि सुनौलो अवसर
7: व्यवसाय अध्ययन लेखाशास्त्र अर्थशास्त्र कम्प्युटर विज्ञान होटल व्यवस्थापन पर्यटन वित्त व्यवसाय गणित र सामान्य कानून
8: विज्ञान संकाय चिकित्सा इंजीनियरिंग प्रविधि अनुसन्धान स्वास्थ्य विज्ञान सूचना प्रविधि तथा विज्ञान सम्बन्धी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहने विद्यार्थीहरूका लागि
7: भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र जीव विज्ञान गणित र कम्प्युटर विज्ञान
8: विद्यार्थीहरूले आफ्नो करियर लक्ष्य अनुसार गणित जीव विज्ञान वा कम्प्युटर विज्ञान जस्ता विषय संयोजन छनोट गर्न पनि सक्नेछन्
7: किन रोज्ने ब्राइट ल्यान्ड
8: हो सबै विषयमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरू केस स्टडी तथा परियोजनामूलक अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण
7: पूर्ण दिवसीय कक्षा सञ्चालन वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता सिप विकास
8: आधुनिक विज्ञान कम्प्युटर विज्ञान तथा होटल व्यवस्थापन प्रयोगशाला उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कार्यशाला
7: नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम MBBS BHM BITM BBA CA MBS तथा अन्य व्यवस्थापन तथा विज्ञान क्षेत्रका लागि करियर परामर्श
8: उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको सुविधा अफिस खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन 2083 असार 1 गतेदेखि थप जानकारीका लागि
7: ब्राइट ल्यान्ड सेकेन्डरी स्कुल पासाङ लामु रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 01 लामु रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081

0: গার্ল নিপা চ্যানেলের এই গানটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানান। আপনার ফিলিংস জানার জন্য আমি অপেক্ষা করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবে না।
1: বীর ডেন্টাল, বীর ডেন্টাল, বীর ডেন্টাল।
2: নেপালগঞ্জ শহরমা সঞ্চালিত অত্যাধুনিক সুবিধা সম্পন্ন বীর ডেন্টালমা দাঁত তথা মুখ সম্বন্ধী সম্পূর্ণ উপচার কাঠমান্ডু তথা ভেরি অঞ্চল অস্পতালকা অনুভবী বরিষ্ঠ ডাক্তার আর কে লামিছানে দ্বারা উপচার গরিন্ছ।
3: ডাক্তার লামিছানে দ্বারা গরিনে বিশেষ উপচারহরু দাঁত সফা গরে, দাঁত ভরে, দাঁত নিকালনে, দুখেকো দাঁতকো জরাকো উপচার, খালি ঠাউমা দুরুস্ত প্রাকৃতিক জস্তাই নকলি দাঁত রাখনে, বাঙ্গো টিঙ্গো তথা নমিলেকো দাঁত ফিক্স অর্থোডন্টিক প্রবিধি দ্বারা মিলাউনে, গিজাকো রোগ জস্তাই গিজা শুন্নিনে, রগত
4: मृगौला, पिसाब थैली तथा नली सम्बन्धी रोगको सबै अपरेसन दूरबीन र लेजर प्रविधिबाट गरिन्छ। यस लगायत पेट सम्बन्धीको सबै उपचार, पित्त थैलीको पत्थरी, अपेन्डिक्स, हर्निया, हाइड्रोसिल, पाइल्स, फिसर, फिस्टुला लगायत पुरुषहरूमा लिङ्ग, ब्रिय र अण्डकोष तथा उत्तेजना कम हुने समस्या र क्यान्सर सम्बन्धी सम्पूर्ण अपरेसन तथा उपचारका साथै हात खुट्टा, ढाड तथा हाड जोड्ने दुख्ने, नसा दुख्ने, झमझमाउने, हड्डी टुटफुट भएको अपरेसनका साथै प्लास्टर पनि गरिन्छ।
5: डाक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कन्सल्टेन्ट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल क्यान्सर, मूत्र तथा मृगोला रोग विशेषज्ञ।
4: डाक्टर राहुल मिश्र, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन, हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ।
5: यस बाहेक मल्टी स्पेशलिस्ट रोगहरूको सेवाका लागि
4: कन्सल्टेन्ट मृगौला रोग विशेषज्ञ सेवा,
5: कन्सल्टेन्ट गायनोकोलोजिस्ट महिला प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा,
4: छाती, मुटु, थाइरोइड, सुगर, प्रेसर रोग विशेषज्ञ सेवा,
5: नाक कान घाँटी तथा टाउको रोग विशेषज्ञ सेवा
4: र छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ सेवा।
5: 24 घण्टा इमर्जेन्सी र फार्मेसी सेवा उपलब्ध।
4: थप जानकारीको लागि कृपा हस्पिटल प्राली, सुर्खेत रोड आदर्श नगर 10 नेपालगञ्ज, वन कार्यालय नजिक नयाँ पेट्रोल पम्पको पश्चिम तर्फ। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-000 र 98-662-24-551।
6: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
7: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै सहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कुटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
3: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परिजस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
2: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
3: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
2: सुनो बहनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है, घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
3: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
2: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
3: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
2: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
4: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए। हाँ दीदिया,
5: स्टार फर्नीचर लैंड, शिक्षा कार्यालय के सामने, बीपी चौक, नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680073 70 और 98195067 67 82।
6: यो कृष्ण सार FM 94
7: मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्ती के तेज़।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी